रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: और साफ रहना हर एक को पसंद है, और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: अच्छा

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ

0: की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: Radio Chennai।

0: Will you
1: dance with me?

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: और स्ट्रीकन से हर दिल की धड़कन ना रेडियो चनार फैम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप दोपहर के भाई बजताइन। आई एम हियर इन द स्टूडियो। जी हाँ, बातचीत जारी रहेगी, आप भी अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। 8899-04904 है नंबर जो आपके दिलों की तार हमारे दिलों से जोड़ता है। और इस फ्रीक्वेंसी पर अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर आए ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, आप वहां पर डीएम करके भी शो में शामिल हो सकते हैं। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सिटी हुक्ड दरगाह।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
1: इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप
0: रेडियो चना वेदर अपडेट
1: और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर ये आज का मौसम सुहाना और आपका दिल दीवाना होने वाला है इट्स सनी फॉर टुडे
0: वेदर अपडेट
1: सनी होने के साथ साथ देयर आर चांसेस कि दोपहर होते होते बादल सूरज को ढकेंगे और हवाएं तेज चलेंगी और गरज और बरस की संभावना भी है
0: वेदर अपडेट
1: यू इंडेक्स मॉडरेट पर है अभी के लिए 6 पर ह्यूमिडिटी 59% विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर विजिबिलिटी 14 किलोमीटर आज का सनराइज हुआ 5:20 पर आज का सनसेट होगा 7:45 पर और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम शो का हिस्सा जरूर बने 888-9904904 इज द नंबर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं मैं हूं जॉक्सिस मेरी जान सिटे हक लड़का तेरा

0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूँ।

0: Jesus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा वायरल ऑन व्हाट्सएप जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं जो भी वायरल रहा
4: व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन व्हाट्सएप क्योंकि ये बात सबने है जानी लोगों ने है मानी कि वायरल है तभी व्हाट्सएप पर है जी हाँ किस्सा है ईस्ट लंदन का जहां पर एक नन्ही सी बालिका 3 साल की बच्ची खिड़की से लटक गई। अब बच्चे हैं नादान है नादानियां करते रहते हैं लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन इस अनहोनी को टालने की कोशिश कर रही थी वो भी 9 मिनट से और तभी दिखा एक इंडियन एक इंडियन ओरिजिन मैन जिसने उस 3 साल की बच्ची को कैच किया जो कि 9 मिनट से जूझ रही थी कि कूदूं तो कहां कूदूं और उसे एहसास हुआ सुरक्षा का उसे एहसास हुआ अपनेपन का क्योंकि जैसे ही वो खिड़की से कूदी उस इंडियन ने उसे कैच कर लिया और ये जो किस्सा है वायरल रहा तभी वो सब पर आ गया। हम भारतीय ऐसे ही हैं जी हाँ जो भी करते हैं दिल से दोस्ती यारी नाते रिश्ते सब मोहब्बत से निभाते हैं भारतीय और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार सिटी हट धड़काते रहो।

का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो हिंदू महान है। जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
3: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: juice. Kom her, ja.
1: Juice. Hottest frequency, her dil ki dhadkan radio chuna 90.4 FM. शायद जुड़े हैं हमारे साथ, लिखते हैं शायद सर राज, आपकी आवाज जो है बड़ी ही मधुर और सुहानी लग रही है। वाह, ऐसा पहली बार सुना है मैंने कि मेरी आवाज मधुर और सुहानी। थैंक यू सो मच शायद हमसे जुड़ने के लिए। सुमेरा जुड़ी हमारे साथ, लिखती हैं सर सुहानी शाम जब भी सुनती हूँ मैं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मैं चाहती हूँ कि सुहानी शाम कभी ना बंद हो और उसमें और सेगमेंट्स। देखिए सुहानी शाम जो है एक्सक्लूसिवली रेडियो चैनल पर आप सुनते हैं और उसकी जो एडिटिंग वगैरह है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसके चलते वी आर प्रिपेयरिंग और जो चंक्स है दे आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। और भी शाम सुहानी होगी, आप बस रेडियो चैनल को प्यार यूँ ही देते रहें। थैंक यू सो मच सुमेरा हमसे जुड़ने के लिए। राजेश हमारे

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप। व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, टिकटॉक्स का तड़का और बॉलीवुड न्यूज तड़कती भड़कती पहुंचाई जाएगी आप तक। जरा सा इंतजार, देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। और इस फ्रीक्वेंसी रेडियो चुनाव से धड़का

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Zeus. Kौन आया?
1: इजाजत ली जाए. जी हाँ, इट्स माई टाइम टू साइन अप फॉर टुडे. और तो दोस्तों वक्त हो चला है कि आज के लिए आपसे इजाजत ली जाए और इट्स माई साइन ऑफ टाइम फॉर टुडे. मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आपसे जुड़ने आ रही है आरजे दीपा. शो का नाम रहेगा चुनार बीट्स. आरजे ज़ूस ऑन द माइक. जी हाँ, बीट्स ऑन रिपीट आप एंजॉय करने वाले हैं कुछ ही देर में. जरा सा इंतजार, देते रहे प्यार और दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार. I'll see you tomorrow 9:30 to 12 again. Until we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, Tata, take care. Kushbash, masala.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

दोनों और बैक टू बैक सॉन्ग्स हो तो अलग ही मजा आ जाए। Yes, मैं और तू, because it's the time for मैं और तू, back to back songs और डे सारी बातें, यानी कि सफर की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या बॉस। और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM सूचना और बीच में हूँ दिवा, हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काए, हक से धड़काए।

बेट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बेट्स आप एंजॉय कर रहे हो नहीं और रेडियो चुनाव 90.4 एफएम डी सारी बातें हो रही एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे की बात करें बहुत साइड से ट्रैफिक को अलो किया जा रहा है एंड करंटली सिचुएशन जो है दैट इज ऑपरेशनल ड्यूरिंग द डे फॉर बोथ वेज यानी कि बोथ वे से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है। आप आराम से आ सकते हैं जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं बस यू हैव टू बी वेरी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज रास्ते में कई कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स की वजह से बाढ़बंदर कंडीशंस की वजह से फिर कभी रुकावट होती है कई कई जगहों पर। रामबन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कभी कभार होता है एंड अभी यात्रा जी अभी स्टार्ट होने जा रही है और कुछ ही समय में अभी काफ़ी ज़्यादा रश भी हमें देखने को मिलेगा एंड मोर ओवर इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और उसकी प्रिपरेशंस भी चल रही है। सो थोड़ा सा हमने गाइडलाइंस पे भी ध्यान देना होता है कि अगर हमने ट्रैवल करना है तो इस रूट पे क्या है गाइडलाइन आज वन वे टू वे है इसको देख कर ही आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करें। तो फिलहाल के लिए अगर आप गाड़ी चला रहे सीट बेल्ट लगा के भैया मुझे गाड़ी चलाइए वरना फिर क्या है पछताइए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे और या फिर गलत जगह पे ओवरटेक करेंगे फाइन भरना पड़ेगा और हम चालक बनने की कोशिश करते हैं लेकिन छह लोग जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस है कॉपरेट करें ट्रैफिक पुलिस के साथ। एंजॉय कीजिए फिलहाल के लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स और कुछ कहना चाहते हैं 8999904904 पर हमें बताइए टेक्स्ट व्हाट्सएप करके अपनी राय हम तक पहुंचाएं और हम आपकी राय पहुंचाएंगे वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़। मैं हूं दीपांश रॉय हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 91.4 FM। ये है दिल की।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM। हाय मैं हूँ आर जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM। मैं हूँ आर जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।
1: जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांदीपुरा।
0: हाय मैं हूँ आर जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM
2: की खूबसूरत फिजाओं।
0: हाय मैं हूँ आर जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनौर से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: अच्छा

फिलहाल दिल तो ये कह रहा है कि थोड़ी और बातें आपसे की जाए, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप सुन रहे हैं शो म्यूजिक ऑन डिमांड। 3 तक आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनेंगे। आप अपनी फेवरेट ट्रैक्स की रिक्वेस्ट 8899904904 पर कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके हम तक पहुंच सकते हैं। तो जल्दी से शो म्यूजिक ऑन डिमांड कैसे बन जाए, एंजॉय कीजिए हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो जनाब 91.4 FM। Thank you.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

show music on demand of Enjoy Kare Only on Radio Chuna 90.4 FM. और यहाँ पर आगे भी रिक्वेस्ट आई इस ट्रैक के लिए एंजॉय कीजिए. आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8999904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
2: Chinar Beats with her.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही हैं एंड आई नो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी होता है ना कि आप हंगामा के टाइम ये चुनार बीट्स आकर ये बीट्स ऑन रिपीट क्यों। देखिए अभी असरा तो यहाँ नहीं है बट आई थॉट कि ये ऐसा एक मौका भी होता है ना और उसके अलावा वो जज्बात भी होते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम है मौका है जगह मार लेंगे भैया जी। आई नो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कभी कभार, क्या हमारे लिसनर्स ये भी कहते हैं कि देखिए टाइम कमी है वक्त की और वक्त की कमी लगती है, तो मैं तो कह रही हूँ भैया वक्त है मौका है दस्तूर है, कहाँ जा रहे हैं हुजूर बात कीजिए, मैं यहीं पे हूँ और सुनने के लिए रेडी हूँ कि क्या आगे चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और स्पेशली जब हम इस वक्त पे कहीं जाते हैं ट्रैवल करते हैं हमारे मन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी ना तापमान बढ़ रहा है, हमें लगता है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे कश्मीर के मौसम का भी वैसा कुछ हाल भी हाइड एंड सीक चल रहा है, सुबह धूप शाम को बारिश। अब देखिए कश्मीर है तो कुछ भी पॉसिबल है ना भैया, मगर कश्मीर ज़्यादा गर्म पौरान की वो तो हम सबको ही पता है कि आज गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। और जब हम अपनी मम्मी पापा से बात करते हैं अपने बुजुर्गों से बात करते हैं तो ऐसा इन वक्त उस बहुत गर्म वासा ऐसे चला, मगर हम कह रहे हैं कि भैया इतनी गर्मी है ना अब कौन सा ही बोल रहा है, हमने तो वो एक्सपीरियंस नहीं किया। जेन ज़ का तो अलग ही मोड़ है। अब आपको क्या लगता है कि आपका इस टाइम का क्या वो माहौल है, एक्सपीरियंस क्या है और क्या है कोई अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस जो आप सच में चाहते हैं कि वहाँ वहाँ तक पहुँचे जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। I am here, why to go here and there, brother? It's Radio Chunar and also वेले हैं वेले लोगों के लिए तो मैं वेली बैठी हूँ और आपके लिए तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ भैया रेडी हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे से कंटिन्यू बोलती आ रही हूँ कि मैं अकेले नहीं आपका साथ मुझे पूरा करता है। सो मैं हूँ यही पे आप भी आ जाइए क्योंकि मौका है दस्तूर है कहाँ जानेगा जोर। बिल्कुल इट्स लाइक मी एंड यू विद बैक टू बैक सॉन्ग। ये मेरा दिल से जाना इसके इसको लगाया तो जाना उफ ये दोपहर और बैक टू बैक सॉन्ग्स ओनली ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो टन ऑन 90.4 एफएम। ये हर दिल की धड़कन तो मामा अक्सर

बेस ऑन रिपीट ये सारी बातें मस्ती मजाक फन एवरीथिंग इज हेयर. और देखिए आफ्टरनून का टाइम है एंड मेरे लिए तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में मैं आफ्टरनून का शो करती थी और मैं मेरी एक अलग ही वाइब ड्राइव थी और ऐसा लगता था कि बस यही तो मेरा टाइम है और इसी के लिए तो मैं जीती हूँ. बट या डेफिनेटली टाइमिंग चेंज हो गई बट जज्बात तो नहीं बदलते हैं ना. जब भी मैं आज अभी आफ्टरनून में शो करती हूँ तो फिर से वो यादें ताज़े हो जाती है मेरी कि यार कितना मज़ा आता था ना. बट स्टिल आपकी वो ऑडियंस तो नहीं कम होती है बट या बट आपका वो एहसास बना रहता है कि यहाँ पर ये टाइम मैंने गुजारा है. सो हमारी जो पास्ट मेमोरीज होती है इट्स नॉट ऑलवेज वो गलत ही हो. समटाइम्स जब आप थोड़ा सा टाइम देते हैं ठहराव के साथ तो आपको लगता है कि सच में बहुत कुछ है हमारे पास में जो एक्चुअली हम अच्छा भी करते हैं बट हमें बुराई क्यों याद रहता है. बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा पास जो है उसका ट्रॉमा में याद रहता है. बट आई बिलीव कि अगर हम चाहें तो अपनी छोटी छोटी जो मेमोरीज है उन्हें रिकॉल कर सकते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि सच में कुछ ऐसा हमारे पास का है जो सच में हम में ज़िंदा है और हमें उस चीज़ का एहसास भी है और हम चाहते हैं कि उस चीज़ के बारे में बात करें और वो हमें हमेशा ज़िंदा रहे. अब बात ही कर लीजिए कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है नो मैटर व्हाट कि आप अगर आप दुख में हो खुशी में हो हर जगह आपको वो इंसान का एहसास रहता है और आपको लगता है कि बस ये इंसान मेरे साथ है ज़िंदगी में. यू डोंट नीड एनी बडी. सो यू आर देयर विद द योर लव्ड वंस. यू चेरिश देयर हैप्पीनेस. उनके दुख में आप उनके साथ होते हैं. सो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं. वी शुड फील दैट वी आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दोज पीपल दे आर इन आर लाइफ. एंड ट्रस्ट मी ऐसे लोगों को कभी दूर मत रखिए क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को ये खुशी महसूस होती है उन्हें फरहम होती है. सो उसे दूर मत करिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाउड वंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं. अब वाई आई एम टॉकिंग लिटिल बिट सेंटी. देखिए हमारी ज़िंदगी में कभी कोई स्पेशल है आपकी ज़िंदगी में स्पेशल है. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू लव योर लव्ड वंस एंड जस्ट कभी कभार एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है. इट्स नॉट दैट यू लव समबडी बट आप बोल नहीं पाते हो तो मतलब ही क्या है. देखिए प्यार तो है बट कभी कभार उस प्यार को जताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है.

तभी तो सच में हमारा दिल भी ये कहता है कि सच में इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी, आपको जो दो बोल ही बोल दीजिए, ये हज़ार खुशियों के बराबर होती है। क्या है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा, आप भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं, अपनी राय अपनी बातें हम तक पहुँचाइए। 8999049049 WhatsApp कीजिए। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Chinar Beats ve Dharce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Jeremy.
1: Hi, man, watch Zeus or Ab Surah Radio Channel 90.4 FM. मैं हूँ और जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय मैं हूँ और जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
2: सुनिए सुहानी चाल सिर्फ और सिर्फ रेडियो चैनल।
1: हाय मैं हूँ और जीसस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Jeremy. Jar Beats with Harshadeva on Radio Channel 90.4 FM.

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: मेरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चनौर से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
0: हम है टीम रेडियो चनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
4: रेडियो चनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात
2: आप वन
1: लेकिन एक बात

जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे म।

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना ब...

0: किशोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी वो नटखट वो खटपट वो पनघट वो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: जल्दी ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
1: हाँ,
2: इतनी सी बात न समझा जमाना।
0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: आते हैं
1: मेरी जूती से
0: जूता पॉलिश करेगा आह जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।